केवेनष्टेयाता न एङता सोवाने आ याय आ याय आ ए मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया शेक्या।